जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चो कर्मं कहो नानक नह चो त्यावे बिन सतगुर बाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना कपड़ रूप सुहावना।

मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे ता साईकार कराए शीशो सेवा करे जिसनो हुक्म बनाए से हुक्म न

0: नानक रत्ना जपनी हर ताके परवा आप कराए साक्ती फिर आप कराए मां इक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिस्या आप कराए करे आप हो कैसो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तसी करनी सा
1: भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तोड़ तू रखदा आया प्रहलाद जान।

मत पत दा राखा आप वाहे गुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गौर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रीख पीख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनपहो प्रकाश अमितोज कह जह कोट इंद्र इंद्राण साह साहान गणिज त्रिपावन महीप सुर नर असुर नीत नीत बन तृण कहत त्व सर्वनाम कथय कवन करम नाम बरनत सुमत सोई पुरख सिवर साचा जाका एक नाम अछल संसारी जिन भगत भव जल तारी सिमरहु सोई नाम प्रधान तित नाम रसिक नानक लहना थप्यो जेन श्रब सिद्धि काव्य जन कलस बुद्धि कीरत जन अमरदास बिस्त्रिया कीरत रव किरण प्रगट संसार साख तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पूब अर पश्चिम

आयाओ। उलट गंग पश्चम तरिया, सोई नाम अशल भगत है पाव तारण, अमरदास गुर कौ फुरिया। छुटत परवाह अमय अमरा पद,

जान मज्जन पोब जिनहु सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शबद मात्र ते उधर तरे कव कल ठकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपर परे न रोगं न सोगं न जातं न मातं न कर्मं न परमं न जन्मं न जातं अद्वैखं अपेखं अजोनी सरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे सुकाहौ टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नू

सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहांद साहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहांद साहु।

बिन सतगुर सेवे जिय के बंदना विच हौ मैं कर्म कमाहे। बिन सतगुर सेवे ठौर न पावही, मर जम्मह आवह जाहे। बिन सतगुर सेवे जिय के बंधना विच हौ मैं कर्म कमाहे। बिन सतगुर सेवे ठौर न पावही, मर जम्मह आवह जाहे। बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना नाम न वसै मन माहे। नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बद्दे मारियन, मोह काल उठ जाहे।

वाहु वाहु वाणी निरंकार है, तिस जे बड अवर न कोई। वाहु वाहु वाणी निरंकार है,

राग गुजरी महला चौथा। हर की जन सतगुर सतपुरख, बिनो करो कृपास। हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास।

दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवैया। पाएं गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्या। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्या। सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहें हम एक न जान्या। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्या। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै कहो तुहारो द्वार। बाही गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ कै गहो तुहारो द्वार। बाही गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईयां शब्दों तां गावहो हरी केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार यहो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्लां सुमरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया जनीशा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ हे वडियाइया। कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तदवस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनहु बड़ भागी हो

सुरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे

सुनती पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तीन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और धारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैं ना जोग कीतो तरस पयोई तरस पया विरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया विरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थी वै

सर्व कल्याण प्रभु कीने, कर कृपा आप दीने, बेदन सतगुर आप गवाई, सिख संत सब सर से होए, हर हर नाम त्याई, रहाओ जो मंग है सो ले वह, प्रभ अपने संतान

जन नानक साच सुपखिया, जो मंग है सो लीवह, प्रभ अपनिया संतां दीवह। हर गोविंद प्रभ राखिया, जन नानक साच सुपखिया। वाहिगुरु जी का खालसा।

रंग परंग अनेक न जापन करते बा, जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरा वस तेरा कर पला, तेरे कर आनंद।

हम अवगुण परी एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पैपूले, सोत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जाम त्रास मिटाई।

गए मशकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

पौड़ी अपने आप साजो अपने रचो नाओ दुई कुदरत साजिया करा संडिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देव है करे पसाओ तू जानो इस सब सह दे ले सह जिंद को आओ करा संडिठो चाओ करा संडिठो चाओ।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्मादी विस्माद वेद विस्माद विस्माद रंग फालांगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खिंडे में डाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजो विस्माद भुख विस्माद विस्माद सुत विस्माद सलाह विस्माद जुड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाथ।

0: धर्मी धर्म करेगा करेगा वावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत ना जाने छड़ बह घर बार सब को पूरा आप होवे घट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे
1: महला पहला वदी सो जग नानका।

सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुरमत मालनासी। सतगुर चरण कवल रिद तारंग, गुर अर

खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरयो बिमल बुद्ध सतगुर सामानो आजो नहीं संभव्यो सो जस कल कवि।

जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता। गुरपुरा पायो पटभागी लिव लागी मेदन पर सहता। पै भंजन पर पीर निवारण कल सहार तोह जस बक्ता। कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुझा अर्जुन हर भगता। धर्म तीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारण। शब्द सार हर साम्यदार अहमेव निवारण। महादान सत गुर ज्ञान मन चाव न हुटा। सतवंत हर नाम मंत्र नव निज नानक।

0: रस जाने ओ। पैनेर पौ माण्यो लाख में लख लखायो अगम गोचर गत कबीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जो कमायो तन तन गुर तन अपार सार सो पर परायो गुर गम परमान हजार जरियो सर संतोख समायो गुर अर्जुन का लुचरे ते सहज जोग निज बायो अम्यो रसना बदन बरदात लख अपार गोर सूर शब्दों में निवार्यो पंचाह निदल्यो सुन से निज कर सहार्यो हर नाम लाग जाग उदर्यो सतगुर दे बसायो गुर अर्जुन का लुचरे ते जन के कलस दिपायो।
1: सोरठे गुर अर्जुन पुरख प्रमाण पार्थो चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारे।

ताते अंगद पयो तत् स्यो तत् मिलायो अंगद कृपा तार हमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छत।

0: लाए चित सन्मुख रहो, कलयुग जहाज अर्जुन गुरु, सगल श्रेष्ठ लग बेहतर हो।
1: तेह जन जाचो जगत्र पर जानियत, बासुर रैन बास जाको हित नाम सियो, परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगयो, बासना ते बाहर पै देखियत धाम सियो, अपर परंपर पुरख सियो प्रेम लाग्यो, बिन भगवंत रस नाहीं और काम सियो, मथुरा को प्रभ सब मैं अर्जुन गोर, भगत कहेत पाए रहो मिल राम सियो, अंत न पावत देव सब मुन, इंद्र महाशिव जो करी, फुन भेद बिरंच विचार रहो, हर जाप न छाड्यो एक करी, मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्टि।

0: पुर अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो प्रताक्षर दै पुर अर्जुन के हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
1: जब लो नहीं पागल लार उदय तब लो ब्रह्म ते फिरते बहुत आयो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो।

सुसहज दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहं कुरसहं तद डठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबता कर कृपा

जन्म जन्म के लागे बेख मोरचा, लागा संगत साध सवारी, जा कंचन बैसंतरताया, मल काटी काटत उतारी, हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर और तारी, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हम मारी, हर हर आगम अगाध बोधा, अपरंपर पुरख अपारी, जान का कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सवारी, हर हर अगम अगाध बोधा, अपरंपर पुरख अपारी, जन का कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सवारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा, घर पहला चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो हर सेवह संत भगत, तिनके सब पाप निवारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी।